0: செல்லம், ஊர்ல இருந்து உங்க அத்தை மாமா எல்லாம் வந்திருக்காங்க பாரு. வந்து வணக்கம் சொல்லு. அட வாமா, உள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?
1: அத்தை மாமா எங்கம்மா? யாரையும் காணோம்.
0: இது ஹால்ல சோஃபால இருக்காங்க பாருடா.
1: எங்கம்மா? என் கண்ணுக்கு யாரும் தெரியல.
0: என் கண்ணுக்கும் தான் யாரும் தெரியல. அப்புறம் எதுக்கு விருந்தாளி இருக்க மாதிரி ஃபேனு, லைட்டு, டிவி எல்லாத்தையும் ஓட விட்டுருக்க? ஃபேனு, லைட்டு, டிவி, ஏசி எதையும் ஆஃப் பண்றது கிடையாது. சார்ஜர்ல இருந்து போன் எடுத்தா சுவிட்ச் அமுத்த போறது கிடையாது. குளிச்சு முடிச்சா ஹீட்டர் ஆஃப் பண்றது கிடையாது. டீ போடுறேன்னு கிச்சன் வருவ, எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனை ஆஃப் பண்ண மாட்டேன். உங்க அப்பா கரண்ட் பில்ல பார்த்து தலை சுத்தி போறது காரணமே நீ தான். என் பொண்ணுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கும் தான். உபயோகம் இல்லாத சமயத்துல மின் சாதனங்களை நிறுத்தி வைப்பது வீட்டுக்கும் நல்லது, நாட்டுக்கும் நல்லது. அடியே மோட்டர் ஆஃப் பண்ண சொன்னே, பண்ணியா?
2: நேரம் 8:30. தொடர்வது கிளாஸ்கோவில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அன்றாட நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை கேட்கலாம்.
3: The Commonwealth Games. नमस्कार, हम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत करना चाहते हैं ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 7वें दिन के अपडेट्स के साथ। 10 खेलों वाले छोटे फॉर्मेट में उतरते हुए 122 सदस्यों वाली भारतीय टीम के सामने एक अनोखी और मुश्किल चुनौती है। ग्लासगो ने कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग और टेबल टेनिस जैसे पारंपरिक खेलों को हटा दिया, जिनमें भारत का दबदबा रहा है। और बर्मिंगहम 2022 में भारत को मिले कुल पदकों में से लगभग आधे पदक इन्हीं खेलों में आए थे। फिर भी इस साल भारत का नजरिया निडर और नए जोश वाला है। खेलों की बदली हुई सूची से निराश होने के बजाय भारतीय खिलाड़ी इन गेम्स को अपनी काबिलियत साबित करने के एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स में शानदार डबल पोडियम फिनिश से लेकर ट्रैक पर लंबी दूरी की दौड़ में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल तक टीम इंडिया दुनिया को एक जबरदस्त संदेश दे रही है।
4: भारोत्तोलन में 2 दिन पहले तक हर दिन पदक आ रहे थे। भारतीय झोली भरने के काम का वजन भी उन्होंने उठा रखा था। हालांकि पिछले बर्मिंगहम खेलों के 3 स्वर्ण सहित 10 पदकों की बराबरी तो इस बार नहीं हो पाएगी, लेकिन अब पदकों की जिम्मेदारी मुक्केबाजों ने उठा ली है। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों में ही अब भारतीय मजबूत दावेदारी ठोकने में सक्षम दिख रहे हैं, तो तैराकी और बोल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिशें जारी हैं। और पैरा खिलाड़ियों के जज्बे को तो सलाम है हमेशा ही। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 इसका 7वां दिन और सारे विवरण के साथ उपस्थित हैं हम। भारत के बेस्ट लॉन्ग जंपर शिशंकर मुरली की कहानी साहस, संकल्प और इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। 1.5 साल पहले जिसका करियर खत्म होने के कगार पे था, वो 74 देशों के खेल मेले में अपनी स्पर्धा में भारत के लिए अपना लगातार 2रा रजत पदक ले आया 8.09 मीटर की कूद के साथ। अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ये दूरी नापी। इसके बाद के 2 प्रयास फाउल हो गए और अंतिम प्रयास में स्वर्ण पदक पाने के लिए उन्हें कम से कम 8.15 मीटर की दूरी पार करनी थी, लेकिन उसे वो नहीं कर सके। अपनी दौड़ से पहले अपने खास अंदाज में खुद में जोश भरने के लिए उन्होंने समर्थकों को इशारा किया ताली बजाने का और कूद की शुरुआत की। केरल के शिशंकर के पिता एस मुरली राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं और उनके कोच हैं। उनकी हर चीज का वो पूरे समर्पण के साथ ध्यान रखते हैं।
5: Actually, always I am the coach and father. We talk about sports only. Whenever we meet, always we plan.
4: हरियाणा में जन्मी मनप्रीत कौर का खेल जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 साल तक प्रतिबंध झेलने के बाद वो सम्मान वापस कमाने के लिए कृत संकल्प होकर फील्ड में आई और बहुत कुछ हासिल कर लिया। ग्लासगो में भी देश के लिए मेडल पाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच गई। 5वें प्रयास में 17.49 मीटर फेंका, लेकिन 4थे स्थान पर रह गईं। पुरुषों के शॉर्ट पट में तेजिंदर सिंह तूर का कहना ही क्या। 2 बार के एशियाई चैंपियन तूर ने आसानी के साथ 20 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया। देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्वरूप पर उनका कहना था।
6: नीरज ने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, तब से हमारे जो इंडियन एथलीट्स है अभी सब अपने अपने इवेंट में बेस्ट करने मतलब कोशिश कर

0: भी बेस्ट करें वर्ल्ड लेवल पर, मुझे लगता है आने वाले सालों में अच्छा करेंगे।
1: तो उनके साथ ही समरदीप सिंह गिल तूर पाजी की छाया से निकलकर अपना स्थान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19.95 मीटर के साथ वे भी क्वालिफाई कर गए। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में कुल मिलाकर सातवें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी भी सातवें और आठवें बेस्ट टाइम निकालकर क्वालिफाई करने में सफल रहे। पारुल चौधरी ने पिछले एशियाई खेलों में 2 दिन में 2 पदक जीते थे, 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर में। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। वो पांचवें स्थान पर रहीं 9:26.75 के साथ।
2: The stunning 1-2 finish marked a watershed moment in Indian para-athletics history, etching Dilip Mahadugavit and Mohammad Basil into the record books as they swept the podium on the Grand Commonwealth Games stage. Dilip's historic gold was secured with a blistering games record time of 10.71 seconds, a milestone achieved by exploding off the blocks and maintaining a relentless lead to rewrite the competition's record books. By turning the sprint track into a showcase of absolute dominance, capped by that new standard, the duo not only elevated India's standing in international short-distance para sports, but also delivered a powerful statement of intent for the nation's rising sprinting pedigree on the global map. Dilip Mahadugavit and Mohammad Basil delivered a breathtaking 1-2 finish for India in the T47 100-meter finals at the Commonwealth Games, with Gavit surging over the final 30 meters to secure the gold medal in a games record time of 10.71 seconds, while Basil stormed home in 10.83 seconds to claim a brilliant silver ahead of England's Kevin Santos. Dilip Mahadugavit, a name who has etched himself in the record books of history. In men's discus throw F42-44, F61-64, Devendra Kumar and Sagar Thayat represented India in para-athletics finals. Sagar Thayat finished in 6th position with a top effort of 46.35 meters, while Devendra Kumar was placed close behind, recording a throw of 48.20 meters.
1: भारतीय बॉक्सिंग के लिए ग्लासगो 2026 का सातवां दिन एक कभी न भूलने वाली उपलब्धि लेकर आया। 6 मुक्केबाज विभिन्न भार वर्गों में रिंग में उतरे और सभी 6ों ने जीत हासिल करके पदक पक्के कर लिए। यकीनन एक अविस्मरणीय दिन जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। शुरुआत की भिवानी की मुक्केबाजी फैक्ट्री की एक और पौध साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की काइटलिन फ्रेयर्स को ये एहसास करा दिया कि क्यों उन्हें जायंट किलर कहा जाता है। एक तरफा बाउट रही 5-0 से साक्षी सेमीफाइनल में। दूसरी बाउट में थी राजस्थान से आने वाली पहली इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी। न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से कांटे की फाइट हुई। दूसरे राउंड में अरुंधति ने बढ़िया प्रहार किए और विपक्षी ने एक पेनल्टी दिखाई। निर्णय एकमत नहीं रहा और 3-1 से अरुंधति के पक्ष में गया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं मेरी जीत को मेरे छोटे भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी। और आज आसान तो नहीं था, बट अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आए तो इसीलिए है कि गोल्ड लेना है, ये तो बस एक सीढ़ी थी।
1: और अब बारी थी लड़कों की। भिवानी के ही सचिन सिवाच के सामने बोत्सवाना के ट्रेजर मॉर्गी थे। वो कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। तीनों राउंड में सचिन के मुक्के ही मुक्के लगातार दिखते रहे रिंग में और 5-0 से एक और निर्णय भारत के पक्ष में। तो अब उत्साहित अंकुश पर भला कौन अंकुश लगाता। सेशल्स के जेड मिकॉक तो पूरी कोशिश करके भी नहीं लगा सके। अंकुश के मुक्कों के आगे बेबस हो गए और सर्वसम्मति से एक और जीत 5-0 के साथ।
4: The winner in the red corner representing India, अंकुश।
1: 90 किलो में नरेंद्र बेरवाल भी हरियाणा से ही हैं और उन्होंने हैवीवेट वर्ग में भी भारतीय परचम फहरा दिया। समोआ के माइकल सेको की कड़ी चुनौती थी उनके सामने, लेकिन आखिरकार वो इसको पार करने में सफल रहे और 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से जीत गए। पिछले खेलों की कांस्य पदक धारी जैस्मिन लंबोरिया लगातार दूसरे खेलों में सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड की एलीज क्लीन को एक बेहद कड़े मुकाबले में उन्होंने मात दी। बॉक्सिंग में अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन 2022 बर्मिंघम में रहा है।

0: स्वर्ण पदक सहित 7 पदक। पदकों के मामले में रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि 10 पदक पक्के हो गए हैं। और इस उपलब्धि पर ग्लासगो में मौजूद बॉक्सिंग के राष्ट्रीय कोच सीए कुटप्पा ने आकाशवाणी को ये खास संदेश भेजा।
1: एवरीवन फॉट वेल, स्पेशली नरेंद्र हु पुट अप ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 120 केजी बॉक्सर। वी स्टिल हैव टू मोर स्टेप्स टू रीच द गोल्ड मेडल एंड द एंटायर टीम इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड डिटरमाइंड टू अचीव दैट गोल। ए स्पेशल थैंक्स टू ऑल द इंडियन टीम members, camp coaches and supporting staff. This performance is the result of everyone's hard work, dedication and teamwork. We are also grateful to the constant support and encouragement from BFI President Sri Ajay Singh, the Secretary General, Executive Director Arun Malik and all the members of the Boxing Federation of India. Thank you everyone for support. Jai Hind, Jai Bharat.
2: India's sole weightlifter in action, Sanjana, suffered a disappointment after recording a did-not-finish in the women's 77-kilogram category. She was unable to settle underneath the bar on any of her 3 snatch attempts, including a final effort at 94-kilogram, resulting in an early exit from the tournament. Sanjana shot to prominence at the 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, winning 3 bronze medals with a combined total lift of 220 kilograms, which included 96-kilogram in snatch and 124-kilogram clean and jerk. She was considered a strong silver medal contender but unfortunately bowed out with a did not finish after failing all 3 of her snatch attempts at 94 kilograms. Despite the setback, the Indian weightlifting team has concluded the majority of its heavy campaigns with a highly successful haul of 7 medals, 1 gold, 5 silver and 1 bronze. And we have some bright good news for all the fans of lawn bowls. At the 2026 Commonwealth Games, India's men's pair lawn bowls team secured a strategic second successive group stage win by defeating Namibia, with Navneet Singh and Dinesh Kumar winning the first set 5-3 and the second set 6-3. From one good news to another, Indian lawn bowler Nayan Monisekia bounced back to defeat Carolyn Whitehead of the Isle of Man in a round 2 match of the women's single sectional play section C at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Following a 0-2 loss to Wales' Amy Williams in round 1, this victory kept Sekia's campaign alive in Section C as she headed into the subsequent sectional rounds. Let's now have a look at how our para swimmers fared on day 7 of the ongoing Commonwealth Games 2026. No medals were won by the Indian para swimmers on day 7 of the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Competitions in the pool concluded with 2 Indian athletes qualifying for and racing in the men's 50-meter freestyle S7 final. These 2 athletes were Chaitanya Vishwas Kulkarni and Suyash Narayan Jadhav. Chaitanya Vishwas Kulkarni finished 4th place in the men's 50-meter freestyle S7 final, clocking a time of 32.77 seconds, while Suyash Narayan Jadhav finished 6th place in the same final event with a time of 35.35 seconds. The gold medal in the final was secured by South Africa's Christian Seidi, who clocked 28.45 seconds to establish a new games record also. Overall, the Indian para swimmers successfully secured multiple final appearances across the competition layout but missed out on reaching podium placements.
0: आज एथलेटिक्स में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा अपने फैंस के सामने होंगे और साथ में रोहित यादव और यशवीर सिंह भी। डेका चालान में तेजस्विन शंकर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और ट्रिपल जंप में सिल्वा प्रभु और प्रवीण चित्रावल उतरेंगे। 400 मीटर सेमीफाइनल में विशाल टीके होंगे और शॉर्ट पट में स्टार तेजिंदर सिंह तूर और उनके जोड़ीदार समरदीप सिंह गिल फाइनल में होंगे। 200 मीटर के सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर भागेंगे और महिलाओं के डिस्कस थ्रो में निधि रानी और सीमा होंगी मैदान पर। 5000 मीटर में पारुल चौधरी पदक की खोज में ट्रैक पर उतरेंगी।
2: यू विल गेट टू विटनेस पैरा ट्रैक साइकिलिंग इन विच वुमेन C4 C5 4000 मीटर इंडिविजुअल परसूट इवेंट विल बी हेल्ड। लीशा दास फ्रॉम इंडिया विल बी टेकिंग पार्ट इन द क्वालिफाइंग राउंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इन ट्रैक साइकिलिंग मेन्स टीम स्प्रिंट इवेंट विल बी कंडक्टेड इन विच रोजीत सिंह यांगलिम, डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, जेम्स सिंह विल बी पार्टिसिपेटिंग। इन वेट लिफ्टिंग यू विल गेट टू विटनेस वुमेन्स 86 kg plus category event in which Martina Devi Maibam will be representing India in the final round. In para track cycling, women's C4 C5 4000 meters

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: உங்கள் FM ரெயின்போவில் தினந்தோறும் காலை 7:30 சைபால் வழங்கும் இன்று ஒரு தகவல்.

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानी श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय

0: आईसीएस परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
1: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
0: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
1: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
0: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
1: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
0: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
1: लब्ध प्रतिष्ठ।
0: इसका अर्थ है
1: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
0: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
0: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान

0: किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पास्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
1: लुई पास्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पास्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पास्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो
0: लुई पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो
5: चलो, लोहा गर्म हो रहा है।
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।

0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
1: लुई पाश्चर
2: सर,
1: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
1: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है, और अच्छी बात यह है इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया, और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?

0: I am sure, 100%, सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर, ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
4: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।

0: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एक निष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट Always working towards the improvement of the human condition.
2: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेना ने कल रात ईरान में हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ और आपके लिए हम पेश करने वाले हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम

0: सुनते हुए भावभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहां भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से, कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों, कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता।
0: जी,
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहां से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहां आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो ये जो दो अट्रैक्शन है जो मुझे SSBB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है,

0: तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशन पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज दुकान वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास यू नो जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा। तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये, आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
1: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
0: अच्छा।
1: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे, दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
0: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हो, वहाँ की टीचर्स हो, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
1: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज, जहां तक मेरे लिए बात है, भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
0: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
1: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता

0: था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था
1: अच्छा
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा
1: वाह क्या बात है,
0: है?
1: क्या बात
0: मतलब आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं,
1: है।
0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई।
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना, जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल
1: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसे कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं। कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं जरूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो के हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी भी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहां तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्जाम जरूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्जाम जरूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूं, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7 के 7 एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
0: अच्छा।
1: 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
0: क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
1: हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहां पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे।

0: एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज्यादा तेज था। एक होता और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था। तो हम चार थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी। क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए। तो वहां हमारा इंटरेक्शन उससे बढ़ा, और देखा कि फाइनली वो एग्जाम दे रहा है। जब वो एग्जाम दे रहा था, तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्जाम देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था। तो मैंने ये एग्जाम दे दिया, और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया। और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया, और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई।
1: अरे वाह,
0: और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो गया है।
1: वाह,
0: तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया एसएसबी का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां गए, वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है। तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ।
1: तब
0: तो
1: जीटीओज आपके हुए
0: हाँ,
1: होंगे।
0: जीटीओज वाला जो काम था वो भी आ गया। तो वहां फिर लाइनअप लगी। तो वहां पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा,
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली।
1: वाह क्या
0: सो
1: बात
0: आई हैड
1: है।
0: टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है। तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस। मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कर्नल साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी। अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन, जैसे आपने हमने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे। आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से भी ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार। क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी, बढ़ चढ़ के,
1: शैतानी,
0: बढ़ चढ़ के।
1: क्या बात है।
0: जो जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर, निक्कर पहनकर बारिश में
1: अच्छा,
0: भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया
1: वाह,
0: अपने जवानों के साथ। कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे, तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूं, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी
1: अच्छा,
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था, यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने, अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो, तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ कि
1: अच्छा
0: आपने क्यों किया,

0: हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: वाह क्या बात है, वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने

0: अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहां रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूं तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नजर आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूं कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहां हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वाज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87, ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे। अच्छा। आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को।

0: रीवा, अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहां से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
0: अच्छा।
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइड्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो उस समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई राइड नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
0: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे ऐसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लावर है कि किस तरह से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशन मिलेंगे और जिस जिस ऑपरेशन पे आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं। मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
0: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? करना
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं। मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे, और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशन का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
1: देखिये, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर
0: जी,
1: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहां शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हवाई श्रीनगर में शादी हो गई।
0: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप

0: आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
1: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड,
0: क्या बात है,
1: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल, मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा, दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो उस सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए, मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528वां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
0: शब्द नहीं है, निःशब्द हूं, एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूं जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे, वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग लेने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आईज।

0: किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा करके अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
0: अभी तक
1: ये वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
0: वाह।
1: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती है मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहां तक बात है रिलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई एम नॉट आई हैव टू रीलिव, मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूं। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
0: वाह, आपने आज निशब्द कर दिया। आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं। बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
0: बहुत खूब। यहां पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूं, जो मैं दिल से चाहती हूं पूछूं। एक वो पल जहां आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहां पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहां पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहां आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव और सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उसे एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर।
0: क्या?
1: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा,

0: बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूँ कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
1: क्या बात है।
0: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहां कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज्यादा खुश है आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
0: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

विनिर्भत्सित गच्छपि मन्दस्मित प्रभापूर मज्जद्गामेश मानस अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजित कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधर कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्वित रत्न ग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्वित कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी